0: और हम ही ने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए इसको सजा दिया।
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
0: और हर शैतान रांदे दरगाह से इसे महफूज कर दिया।
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो चमकता हुआ अंगारा इसके पीछे लपकता है।

0: उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं।
1: قال فخرج منها فإنك رجيم।
0: खुदा ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू मर्दूद है।
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين।
0: और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी।
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون।
0: उसने कहा कि परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे।
1: قال فإنك من المنظرين।
0: फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है।
1: إلى يوم الوقت المعلوم।
0: वक्त मुकर्रर यानी कयामत के दिन तक।

0: उसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं।
1: इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून,
0: जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे।
1: उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन,
0: उनसे कहा जाएगा कि इनमें सलामती और खातिर जमा से दाखिल हो जाओ।

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

इसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और बेशुमार दरख्त उगाता है और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर करने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बड़ी निशानी है।

और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया, और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं।

और खजूर और अंगूर के मेवों से भी तुम पीने की चीजें तैयार करते हो कि उनसे शराब बनाते हो और उम्दा रिस्क खाते हो, जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए इन चीजों में कुदरत खुदा की निशानी है।

और खुदा ही ने तुमको पैदा किया, फिर वही तुमको मौत देता है, और तुम में बाज ऐसे होते हैं कि निहायत खराब उम्र को पहुंच जाते हैं और बहुत कुछ जानने के बाद हर चीज से बेइल्म हो जाते हैं। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और कुदरत वाला है।

और खुदा ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया, और उसी ने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाए, जिनको तुम सुबुक देखकर सफर और हजर में काम में लाते हो, और उनकी ऊन और पशम और बालों से तुम असबाब और बरतने की चीजें बनाते हो जो मुद्दत तक काम देती हैं।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए
4: अस्सलाम वालेकुम आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया मैं हूं मरियम इरशाद लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ इस प्रोग्राम के जरिए हम फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के असातिज़ा से एकेडेमिया फैकल्टी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज नेटवर्किंग स्किल मीडिया ट्रेंड्स फिल्म मेकिंग जर्नलिज्म एड पीआर एंटरप्रेन्योरशिप और जैसे अहम मौजूदात पर गुफ्तगू करते हैं और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान खास मौजूद हैं उनकी शख्सियत का तारुफ करवाते हुए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं है बल्कि वो एक फिल्म मेकर हैं और बहुत ही काबिल फिल्म मेकर हैं जो बहुत अवार्ड याफ्ता हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से हकीकत में कहानियों को किस तरह से नरेट किया जा सकता है सोच से हकीकत तक का सफर बड़े अच्छे से कैमरे के थ्रू कैमरे के लेंस के थ्रू अपने नाज़रीन तक पहुंचाया अस्सलाम वालेकुम सर
5: वालेकुम सलाम थैंक यू फॉर हैविंग मी
4: सर उमर सईद कुरैशी फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है लेक्चरर हैं और साथ BS कोऑर्डिनेटर भी हैं सर आपका सफर एज अ फिल्म मेकर कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है मुझे कैमरा और लेंस और कैमरे की आंख क्या कहती है ये दिखाना है
5: मेरे ख्याल से इट ऑल स्टार्टेड जब मैं छोटा था और मैंने एक दफ़ा जो एक ब्लरी मेमोरी मेरे माइंड में आती है कि मेरी वालदा हमारी पिक्चर्स लिया करती थी और उन्हें बड़ा शौक था वो लाहौर से एक रील लाती थी और वो अपने कैमरे में डालती थी उसके बाद जब वो पिक्चर लेती थी तो मुझे हमेशा से याद है वो कहती थी कि आप दीवार से ज़रा दूर खड़े हों पौधों से ज़रा दूर खड़े हों शायद उन्हें एक्चुअल वर्ल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड का तो नहीं पता था बट उन्हें कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा लाजमी था कि जब वो हमें खड़ा करती थी दीवार से दूर तो जो भी सनफ्लावर्स थे या दीवार थी वो हमेशा ब्लर सी आती थी तो मुझे वो मेमोरी तब भी याद है कि बचपन में कैसे हमारी पिक्चर्स ले रही होती थी और मुझे लगता है वही रीज़न था कि जब मैं बड़ा हुआ पहली दफ़ा FSC में गया मुझे स्कॉलरशिप मिली मुझे थोड़े पैसे मिले तो जो मैंने पहली चीज़ ली वो मैंने अपना कैमरा लिया और उससे पहले भी जो मेरे पास सेल फोन्स होते थे मैं हमेशा वो सेल फोन लेता था जिसका कैमरा हमेशा अच्छा होता था और वो कैमरे से पिक्चर्स ली अपने पेंटियम वन में डाली और उसे एडिट किया एक सॉफ्टवेयर होता था उस ज़माने में डेट वॉज फोटोस्केप तो मुझे लगता है हमेशा से मुझे शौक था नेचर कैप्चर करने का लोगों को कैप्चर करने का रियलिटी कैप्चर करने का
4: तो जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है मुझे कुछ डिफरेंट करना है मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना जैसे आप बता रहे थे कि आपने FSC किया है तो घर वालों ने सपोर्ट किया उन्होंने कहा नहीं कि ये क्या करने वाले हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ऐसा करके क्या कर लोगे इसमें क्या कमा लोगे
5: बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल जो KPK के लोग हैं पंजाब में तो शायद ये बड़ा कॉमन था मैस मीडिया फिल्म फोटोग्राफी हमारे वहाँ पे दो ही शोबे समझे जाते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर तीसरा फाइन आर्ट्स वाले बच्चों को समझा जाता था कि शायद बड़ा कमज़ोर कुन जैन बच्चा है ये ज़्यादा पढ़ नहीं सकता तो जब मैंने डिसाइड किया मैंने अपने वालिद को बताया तो फर्स्ट तो वो थे कि नहीं किसी अच्छी फील्ड में चले जाओ बिजनेस में चले जाओ कुछ और कर लो एंड ऑल दैट लेकिन लकीली मेरे कुछ कज़न थे लाहौर में कुछ दोस्त थे जो NC में पढ़ रहे थे और जब बात की उनसे उनने वालिद साहब को मनाया बट नो डाउट पीयर प्रेशर वालदैन का प्रेशर था कि कोई अच्छी फील्ड चूज़ करो ये नई फील्ड है इसमें पैसे नहीं है कैरियर नहीं है लोग इसे अच्छा देखते नहीं है समझते नहीं है तो वो प्रेशर तो हमेशा से था बट मुझे लगता है मैं भी काफ़ी ज़िद्दी था और मैंने मना लिया किसी ना किसी तरह
4: और वो यही होता है ना कि टाइम के साथ आपके पेरेंट्स समझ भी जाते हैं कि इसकी क्या कैपेसिटीज हैं और ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जब आपने फिल्म मेकिंग का स्टार्ट किया तो क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसे पर्सन, कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया टू बी अ फिल्म मेकर?
5: मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड सिनेमा था उस जमाने में कुछ चैनल्स आते थे और मैं हमेशा एक फिल्म थी, मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, उनकी एक मूवी थी मकबूल और वो केबल पे एक दिन चली और हम बैठ के देखते थे, छुप के घर से देखते थे क्योंकि मूवीज भी नहीं देखने देते थे घर वाले। तो मकबूल मैंने पहली दफा देखी और मकबूल देख के मेरे माइंड में आया कि ये लिखता कौन है, बनाता कौन है, कैसे बनती हैं। और एक एनसीए के मेरे दोस्त थे, वो जब लाहौर से एबटाबाद आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये फिल्म बनती कैसे है, ये लिखता कोई और बंदा है, शूट कोई और करता है, इसका साउंड कोई और करता है, एडिट कोई और करता है। तो मैंने कहा ये सारा कैसे सीखूंगा मैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि देयर इज अ डिपार्टमेंट एनसीए में, बीएनयू सक न्यू ओपन हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा वहां पे आप जाएंगे आपको सब चीजें थोड़ी थोड़ी सिखा दी जाएंगी और इन सबको कंबाइन करके फिल्म बनती है। तो मैं स्टार्ट में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा क्योंकि मैं तो एक लाइन भी नहीं लिख सकता था। तो लेकिन कुछ फिल्म और कुछ डायरेक्टर्स ने मुझे इंस्पायर किया, जिसमें पहला नाम मैंने विशाल भारद्वाज लिया, दूसरा दिल से एक मूवी आई थी मनी रत्नम की, तो मनी रत्नम की मूवी मैंने देखी, उस वक्त उसका एक गाना था सतरंगी, तो वो क्योंकि पहाड़ों में शूट हुआ है, मैं खुद पहाड़ों से था एंड ऑल डैट, तो मैं हमेशा पहाड़ों को देखता था, मैं कहता था यार ये गाना मैं भी कभी शूट ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फैक्टर्स थे उस वक्त जो मैं चीजें देखता था, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि यार करनी चाहिए फिल्म मेकिंग।
4: इसमें आपको ये नहीं लगता कि आपका जो रहन सहन होता है, जो आपका कल्चर होता है, जो आपकी, जैसे आप कह रहे थे पहाड़ों से है, वो आपकी इमेजिनेशन को बड़ा बूस्टअप करता है?
5: बिल्कुल बूस्टअप करता है और यही रीजंस हैं कि अभी भी जो मूवीज मैं देखता हूँ जो कि मोस्टली पहाड़ों में बनी हुई हैं, वो मुझे इंस्पायर ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू अदर मूवीज, क्योंकि वो बचपन जिया आपने, वो रियलिटी देखी है, ऑब्जर्व किया। जिस तरह रिसेंट एक फिल्म थी लैला मजनू, वो लैला मजनू शायद इतनी अच्छी फिल्म नहीं होगी बट मुझे इसलिए अच्छी लगी पहाड़ों में शूट हुई। देयर इज अनदर फिल्म हैदर विशाल भारद्वाज की, वो उससे ज्यादा कनेक्ट मैं इसलिए कर सकता हूँ कि शायद वो पहाड़ों में शूट हुई। तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है जिस कल्चर में आप पले बढ़े, और उस कल्चर में हमें एक और चीज बड़ी मिलती थी, वो था सुकून और टाइम। अफरा तफरी नहीं थी जैसे कि बाकी शहरों में होती है, तो हमारा एक ही काम होता था, या तो नेचर ऑब्जर्व करना या तो लोगों को ऑब्जर्व करना। और मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग में ये दोनों बेसिस हैं कि आपने अपना स्टोरी वर्ल्ड कैसे बनाना है और उसमें जो अपने कैरेक्टर्स डालने हैं वो कैसे डालने हैं। तो वो मेरे ख्याल से उसी इंसान के लिए पॉसिबल है जिसने ऑब्जर्व की होंगी ये दोनों चीजें।
4: और एज अ फिल्म मेकर जब आपके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं और वो आपको अपने आइडियाज का बताते हैं और वो कहते हैं कि हम इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं, तो एज टीचर और एज अ फिल्म मेकर कितना चैलेंजिंग होता है उनको बताना कि बेटा आप राइट डायरेक्शन में हो, या किस तरह से इसको आप ओवरऑल अपनी इमेजिनेशन को पोर्ट्रे कर सकते हो?
5: मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चीज होती है वो होती है रियलिटी, एक तो होती है लिव्ड रियलिटी और एक होती है इमेजिनेटिव रियलिटी जो आपने किसी मूवी में देख ली। फॉर एग्जांपल मैंने कभी सरसों के खेत अगर रियलिटी में नहीं देखे, मैंने खाली उन्हें करण जौहर की फिल्म्स में देखा, तो वो रियलिटी सेकंड हैंड रियलिटी है मेरे पास और वो खाली इमेजिनेटिव चीज है। मैंने रियलिटी में देखी नहीं कि सरसों के खेत लगते कैसे हैं। तो बच्चों का मसला ये है कि वो जो उनने रियलिटी लिव की है, जो एक्सपीरियंसेस लिव किए हैं, वो उसे कभी भी स्क्रिप्ट में नहीं लाते हैं। वो जो सेकेंडरी रियलिटी, गैंग्स ऑफ वसीपुर देख लिया, मिर्जापुर देख लिया, वो चाहते हैं कि वो वाली रियलिटी लिख के लाएं जो कि बिलीवेबल नहीं बन रही होती है टाइम्स। तो मैं उन्हें पहला जो असाइनमेंट है वो वही देता हूं कि जो चीज आप डेली ऑब्जर्व कर रहे हो उसे लिखो। वो किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी जगह पे चोरी हो सकती है, किसी जगह पे लड़ाई हो सकती है। तो मुझे लगता है जो लिव रियलिटी है वो लिख अच्छे तरह से सकते हो और आप वो शूट अच्छे तरीके से कर सकते हो क्योंकि आपने वो ऑब्जर्व किया होता है, पल जिया होता है।
4: इसी के साथ लिसनर्स हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आपके साथ।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद गुफ्तगू हैं वो हैं सर उमर सईद कुरैशी, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। अभी ब्रेक में जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए कितना चैलेंजिंग है और एज अ फिल्म मेकर आपके लिए कितना चैलेंजिंग है उन्हें समझाना, तो सर कोई ऐसी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो आपके करियर में आपको जिसने टफ टाइम दिया हो या जिसके बाद आपका सोच या आपके काम करने का जाविया बड़ा बदल गया?
4: मेरे ख्याल से एक फिल्म थी जो हमने की फसी भाई खान के साथ, जिनका एक बड़ा फेमस प्रोग्राम चलता है कद्दूसी साहब की बेवा। तो फसी भाई की स्क्रिप्ट जब पहली दफ़ा आई वो इतनी अच्छी सादा सलीस उर्दू थी कि वो समझते हुए हमें टाइम लगा। और मैं इससे पहले डेफिनेटली FSC तक उर्दू तो पढ़ता रहा, लेकिन काफ़ी गैप के बाद इतना अच्छा जब कोई प्रोजेक्ट आया वो मैंने पढ़ा। और वो जब पढ़ा मैंने, क्योंकि जो एक अच्छा राइटर होता है उसकी निशानी यही होती है कि जब आप उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आप इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को। तो जो फसी भाई की स्क्रिप्ट थी वो चैलेंजिंग इसलिए थी कि पहली दफ़ा इतने बड़े राइटर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल काम किया, दूसरा फसी भाई डायरेक्ट भी कर रहे थे, सेट पे भी थे। मुझे लगता है वो एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जब हमने किया क्योंकि वो अंदरून लाहौर में करना था और अंदरून लाहौर की छोटी गलियों में लोग ना जमा हो जाएं, फिर जब आप कमरे में शूट कर रहे हो तो बाहर से रेडी वाले की आवाज आ रही है, कभी किस बच्चे की आवाज आ रही है, ऑल दैट। तो वो इतनी बड़ी प्रोडक्शन में जब मैंने पहली दफा शूट किया और शूट के बाद जब वो एडिट होकर सामने आया तो एक तो आपको अपने पोटेंशियल पे भी यकीन होने लगता है, आप कहते हो यार ये तो मैं कर सकता था, और फिर आप कहते हो मैं कर क्यों नहीं रहा था। तो वो प्रोजेक्ट ने मुझे लगता है हमें बड़ा कॉन्फिडेंस दिया फॉर अ रीजन के वो उसके बाद साइप्रस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक गया, वहां पे स्क्रीन हुआ, उसके बाद वो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुआ। जब यहाँ दो जगह स्क्रीन हुआ तो मुझे लगा कि यार इतनी मेहनत करके हम कोई और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और वो डेफिनेटली इससे आगे भी जा सकता।
3: अच्छा, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप एक वर्ड बार बार बात कर रहे हैं एडिटिंग का, यानी एडिटर और एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टर, इसमें डिफरेंस क्या होता है?
4: देखिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एडिटर, जो कि एंड रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस पूरी फिल्म का करता है। हमें पहली क्लास में फिल्म मेकिंग की पढ़ाया जाता था कि जो एडिटर होता है वो फिल्म का खुदा होता है। वो एक अच्छी शूट की हुई चीज़ को बुरा भी बना सकता है और बुरी शूट की हुई चीज़ को कमाल भी बना सकता है। तो एडिटर तो बाद में आते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सिनेमाटोग्राफी है। जो एक सिनेमाटोग्राफर होता है उसका काम अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया जाए तो इट्स लुक एंड फील। आपको फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी कहूँ, आप एक क्लिप चल रहा है इंटरनेट पे, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये जब भी मेट का है, तो आप विद इन सेकेंड्स कहेंगी हाँ। मैं आपसे पूछूं क्यों, आप कहेंगी पूरी फिल्म में जो लुक एंड फील है वो सेम ही है और मैं जहां पे इसका क्लिप देखूंगी मुझे पता लग जाएगा। ये निशानी है एक अच्छे सिनेमाटोग्राफर की कि उसने अपना एक स्टोरी वर्ल्ड बनाया और वो स्टोरी वर्ल्ड लोगों को याद करवा दिया खाली अपनी लुक एंड फील के थ्रू। अब सिनेमाटोग्राफर का काम हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है कि खाली कैमरा हैंडल करना, हालांकि सिनेमाटोग्राफर का काम यूजली कैमरा हैंडल करना नहीं होता। वो कॉम्प्लेक्स शॉट्स में तो कैमरा खुद हैंडल कर सकता है, लेकिन वो यूजली कैमरा ऑपरेटर से जो लुक एंड फील होती है डिजायर्ड किसी सीन की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक सुबह है जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से काम कर रहे हैं और दोनों खफा एक दूसरे से, यानी उदासी है कमरे में। अब राइटर ने तो लिख दिया, डायरेक्टर ने कहा मुझे उदासी भी चाहिए, चैन एवरीथिंग। अब ये आप कैसे दिखाओगे थ्रू कलर्स, थ्रू फ्रेमिंग, थ्रू लेंस, कि कितना गैप है दोनों में, बीच में क्या चीजें हैं, क्या वो किसी बीच पे खड़े हैं, नेगेटिव स्पेस कितना है, पॉजिटिव स्पेस कितना है, कॉम्पोजिशन कैसी है। तो सिनेमाटोग्राफर राइटर की चीजों को स्क्रीन पे लेके आता है थ्रू लुक एंड फील। सिनेमाटोग्राफर के बाद फिर एडिटर के पास जाती है चीज़, और एडिटर जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई होती हैं, कुताइयां रह गई होती हैं सिनेमाटोग्राफर से, उसे समझाता है कि यहाँ पे मैं ये चाहता था 19:20 हो गया, अब आप इसे ठीक कर दें थ्रू कलर टोनिंग या थ्रू कलर ग्रेडिंग। और इसका भी डिफरेंस अक्सर स्टूडेंट पहली क्लास में पूछते हैं कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग का क्या डिफरेंस होता है, तो वो हमेशा जो हमें सुन भी रहे हैं उनके लिए भी यही है कि कलर करेक्शन आपकी सिंपली ओवरऑल आपकी मूवी क्या तो कूल टोन की तरफ है या तो वार्म टोन की तरफ है। बट कलर ग्रेडिंग में जब हम आते हैं, हम कहते हैं जी अगर कोई बंदा बैठा हुआ है हमारे सामने व्हाइट के आगे व्हाइट शर्ट पहन के, तो व्हाइट के आगे व्हाइट शर्ट कभी भी ठीक नहीं लगेगी, बंदा प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो कलर ग्रेडिंग में हम उस व्हाइट शर्ट का कलर चेंज करके ब्लू कर देते हैं। अगर किसी बंदे ने रेड लिपस्टिक या किसी खातून ने लगाई हुई है और हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा लग रही है, तो हम कलर ग्रेडिंग में जाके उस लिपस्टिक को टोन डाउन कर देते हैं
3: और वो हो जाता है इजीली
4: हो जाता है। और हमने बहुत बड़े बड़े शूट्स में किया
3: ठीक है, और इसी तरह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस होगा?
4: प्रोड्यूसर यूजली इन फिल्म प्रोड्यूसर यूजली करता है इस तरह कि एक तो बजट वो जहां से भी लाए, चाहे वो स्पॉन्सर्स के थ्रू लाए, किसी चीज के थ्रू लाए, उसके बाद फिल्म की मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। डायरेक्टर खाली कर ये रहा होता है कि आपके राइटर के विजन को स्क्रीन पे लाने वाला प्रोसेस सारे डायरेक्टर के पास होता है, और जो प्रोड्यूसर है वो आपका बजट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रहा होता है सारी।
3: और सर अगर बात करें हम फिल्म मेकिंग की और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की, तो किसकी डायरेक्शन प्रोडक्शन बहुत चैलेंजिंग होती है और किस में बहुत ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किसको रियल कैमरा और वो जो रियल और रील का डिफरेंस है उसमें खत्म करना जो है वो बहुत चैलेंजिंग लगता है?
4: मुझे लगता है कि अगर मैं क्योंकि मैं खुद फिल्म ज्यादा पसंद करता हूँ, तो आप किसी डॉक्यूमेंट्री वाले से पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट्री को ही कहेगा। मुझे लगता है कि एक स्टोरी वर्ल्ड बनाना इज ज़्यादा डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू एक स्टोरी वर्ल्ड बना हुआ और उसमें जाके शूट करना, बट दोनों की डिफिकल्टीज अपनी अपनी है। अगर आप मुझसे पूछेंगी कि एक स्टोरी वर्ल्ड बिल्ड करना बाय फिल्म की, हम सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। जो डेफिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा सूट करती है, मुझे लगता है इट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। रियलिटी का आपने एक बबल क्रिएट करना है, और जो सिनेमा में बैठा हुआ है उसे पता है कि वो एक इल्यूजन देख रहा है, बट वो स्टिक हो गया उसके साथ क्योंकि उसे वो रियलिटी लग रही है। अब वो रियलिटी क्रिएट करना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। एज कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट्री, आप रियलिटी में जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं और उसे फिर क्रिएटिवली ट्रीट कर रहे हैं। रियलिटी तो आपके पास बनी पड़ी है, फिल्म में तो आपने एक रियलिटी बनानी है और यकीन दिलवाना है कि ये रियलिटी है, इल्यूजन एक क्रिएट करनी है। तो मुझे लगता है कि वो इल्यूजन ऑफ रियलिटी बनाना ज़्यादा मुश्किल है As compared to documentary. लेकिन आप ये documentary वाले से पूछेंगी तो शायद उल्टा जवाब आएगा।
3: ऐसे ही है। और सर जब स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, आपके पास भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें अक्सर डिमांड में आप ही मिल रहे होते हैं फिल्म मेकिंग में, बच्चे चाह रहे होते हैं कि वो आपके साथ प्रोजेक्ट्स करें, तो आप ज्यादा फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स करवा रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज के भी करवा?
4: मैं एक आधा डॉक्यूमेंट्री का लाजमी पकड़ता हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उनको करवाते करवाते मेरी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैंने की भी हैं, 3 से 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा पसंद मुझे फिल्म ही है, बट डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट्स मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए भी करवा रहा होता हूँ।
3: और फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री में कितना चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट?
4: मेरे ख्याल से चैलेंजिंग इसलिए होता है कि आप बच्चों को जितना मर्जी अच्छा समझा दो, एंड रिजल्ट जब वो लेके आते हैं वो अपनी समझ के मुताबिक लेके आ रहे होते हैं, और फिर उसे ही निखारना होता है आपने, और एंड पे सम हाउ पूछा यही जाता है कि कौन था सुपरवाइजर। चाहे वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो तब भी सुपरवाइजर, बहुत बुरा हो तो तब भी सुपरवाइजर। तो मुझे लगता है वो फिर आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ती है क्योंकि आपका नाम

0: मसले हैं, कल्चर के मसले हैं, वो सिनेमा देखने से आप कुछ ना कुछ लाजमी सीख रहे होते हैं। और अगर तो आप रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन आपकी वीक है, आप ट्रैवल नहीं करते, तो मुझे लगता है आप आर्ट सिनेमा देखें, क्योंकि मुझे लगता है देखने से जितना आप सीखते हैं, क्योंकि मैंने जब जाता हूँ शूट करने कोई भी चीज़, तो कहीं ना कहीं से मेरे माइंड में इंस्पिरेशन होती है कि मैंने फलां फिल्म देखी थी, वहाँ पे ये कॉम्पोजिशन थी, वहाँ पे शॉट इस तरह लिया हुआ था। तो आपकी विजुअल वोकेबलरी बढ़ती जाती है जब आप अच्छी फिल्म्स देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स को मशवरा है कि डेली की एक फिल्म देख के सोएं।
1: और सर, जब स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट करना होता है तो उनकी डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एज ए DOP, वो सब चीज़ें खुद कर रहे होते हैं?
0: नहीं, मोस्टली वो हेल्प ले रहे होते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में आपकी प्रोडक्शन के लिए आपको वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो हम एम्फसाइज करते हैं कि एटलीस्ट एडिटिंग और डायरेक्शन आप खुद करें, DOP, लाइट, गैफर, ये आप बाहर से लोग हायर कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में इन द एंड काम डायरेक्टर ने ही करवाना है। गैफर को तो आप कहेंगे इस प्लेस पे लाइट रखे, इस डायरेक्शन में लाइट रखे, वो रख देगा। कहाँ से कट करनी है, कितनी कट करनी है, कितनी डिफ्यूज करनी है, वो डायरेक्टर का ही काम है, तो वो काम करवाता है यूजली।
1: ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल अभी का टाइम की बात की जाए तो AI ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोजेक्ट को इस तरह से मैनेज करना, प्रोजेक्ट को लेके चलना उतना ही आसान है, या स्टूडेंट्स जो है उसकी वजह से चीज़ों का फायदा उठाते हुए कुछ चीज़ों को कर भी रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग भी है?
0: देखिए, अगेन AI इज़ अ गुड थिंग और होनी भी चाहिए, स्टोरी बोर्ड तक और बाकी चीज़ें आपकी हेल्प लाजमी, असिस्ट लाजमी करती है। बट AI ने वो दुनिया नहीं देखी, वो एक्सपीरियंसेस नहीं देखे, ना वो फील किए हैं जो कि एक नॉर्मल बंदा रियल लाइफ में कर सकता है। जैसा कि सिंपल एग्जांपल दूंगा, इम्तियाज़ अली की जितनी फिल्म्स होती हैं उसमें आप देखेंगी कि जब भी करेक्टर को हर्ट होता है लव लाइफ में या कुछ उसको धचका लगता है ज़िंदगी में, तो वो अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है। अब ये चीज़ आपको AI नहीं बता सकता, ये आपकी प्योर ऑब्जर्वेशन है कि जब बंदे का दिल दुखी होता है तो क्या क्या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ में कर सकता है। इम्तियाज़ अली की फिल्म में आपको मिलेगा कि वो अकेला बैठ के किसी फूड पॉइंट पे खाना खा रहा है। अब AI आपको नहीं बता सकता, वो बताएगा शायद अमेरिका के कल्चर के हिसाब से कि हाँ, जब कोई बंदा सैड होता है तो वो जाके समंदर के किनारे बैठता है, तो लाहौर में तो आपको समंदर नहीं मिलेगा, यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। तो मुझे लगता है कि असिस्ट लाजमी कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हो जी रावी किनारे बैठा हुआ है मेरा बंदा एंड ऑल डैट, अब मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके एक्शन की, तो वो लाजमी कर सकता है, असिस्ट लाजमी कर सकता है, बट जो विजन है प्योरली वो आपका ही है।
1: और क्या स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को AI?
0: मेरे ख्याल से करता है, असिस्ट करता है, मैं अभी हेल्प इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने खुद बड़ी स्क्रिप्ट जनरेट करवाने की कोशिश की है। हेल्प तब करता है जब आप क्लियर हो कि आपने क्या करना है। मैंने एक सीन दिखाना है तो मैं उसे बताऊंगा सीन में ये चीज चाहिए, ये मेन पॉइंट्स है, हाँ, वो तब लिख देगा। अगर मैं उसे कहूंगा सीन लिख दे पूरा, तो वो आधी उसने कोई चीजें अमेरिका की देखी होंगी, आधी साउथ अफ्रीका की, कहीं कहाँ की, तो मिक्स करके आपको चीज तो लिख देगा, नो डाउट, बट उसमें प्योरिटी और क्लैरिटी मुझे अभी तक नहीं मिली।
1: और एज अ फिल्म मेकर एंड अ टीचर, कितना चैलेंजिंग है उस काम को जज करना जो शायद स्टूडेंट्स ने असिस्ट करवाया हुआ है AI से?
0: मेरे ख्याल से असिस्ट करवाना मुझे बहुत बेहतर लगता है, बट मैं उससे पहले उनका विजन लाजमी पूछता हूँ। मैं कहता हूँ अपने विजन, अपने शॉट्स, अपनी चीज़ों में क्लियर हो जाओ, उसके बाद AI से हेल्प ले लो। फॉर एग्जांपल, रिसेंट एक शॉट था और एक बच्चा वाज वेरी क्लियर कि मैंने क्या करना है, बट उसने अपने DOP को समझाना था, तो मैंने कहा यही चीज़ आप लिखो AI में और एक इमेज जनरेट करवाओ और यही अपने DOP को दिखा दो कि मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ तक मामला मुझे क्लियर लगता है कि जब आप क्लियर हो और आपने काम करवाना है तो आप असिस्टेंस लाजमी लो, बट प्योरली जब आप AI के ऊपर चले जाओगे तो मेरे ख्याल से विजन आपका नहीं रहेगा।
1: और लास्ट में जो आप एडवाइस देना चाहें फिल्म मेकिंग में स्टूडेंट्स को, जो स्पेसिफिकली इसको एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है?
0: मेरे ख्याल से सबसे पहले तो फिल्म्स देखें, दूसरी चीज़ डेली अगर आप इतने पैशनेट हैं जाएं, पिक्चर्स लें, फ्रेमिंग बेटर करें, क्लिप शूट करें, बैठ के एडिट करें। अगर ये पैशन नहीं है और आपको ये सर दर्द लग रहा है तो मुझे लगता है फिर शायद आपको और फील्ड चूज कर लेनी चाहिए।
1: इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। बहुत शुक्रिया सर उमर सईद कुरैशी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आके हमें इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई फिल्म मेकिंग से रिलेवेंट, और सीखने को इतना कुछ मिला। मुझे यकीन है कि हमारे सामईन ने भी बहुत कुछ सुना होगा। नेक्स्ट वीक इसी तरह से मेरा और आपका सिलसिला जुड़ा रहेगा और मिलेंगे फैकेलिटी आर्ट के साथ।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

0: ये मुश्किलात क्यों हैं, और सबसे बढ़कर वो ये बताता है कि ये जिंदगी ख़त्म क्यों हो जाती है और इसके खात्मे के बाद आइंदा आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी बातें जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और जब इंसान उनको जान लेता है, समझ लेता है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, तो जैसे कि मैंने गुजारिश की, उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक क्लैरिटी और एक इत्मीनान मिल जाता है।
1: ठीक है, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये कैसे बावर कराया है कि उसने हमें पैदा किया है, उसने ये बात हमें कम्युनिकेट कैसे की है?
0: बेसिकली दो तरीक़ों से। एक तो ये कि हमारी अपनी शख्सियत डिज़ाइन के अंदर पहले से ये एहसास वदियत कर दिया है।
1: ठीक है,
0: हम अपने अंदर के उस डिज़ाइन की वजह से पहले से जानते हैं कि अल्लाह ताला मौजूद है। मगर ऐसा नहीं है कि हम कोई क्लियर मेमोरी लेके आए हैं कि हम अल्लाह ताला से मुलाकात करके अभी अभी आ रहे हैं और हमें वो सारी तफसीलात मालूम है। नहीं, उसका एक एहसास हमारे अंदर रख दिया गया है, और अल्लाह ताला ने ये बताया कुरान मजीद में कि ये एहसास हमारे अंदर इस वजह से है कि हम उसके साथ एक वाकई रियल रूहानी मुलाकात करके आए हैं,
1: अल्लाह ताला से
0: इस बात का इकरार करके आए हैं कि अल्लाह वाहिद हमारा रब खालिक मालिक है। ये तो एक चीज़ है। ये आप कह सकते हैं कि खारिज की दुनिया में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो फौरी दलील नहीं बनती। फौरी दलील बनती है इस कायनात का निज़ाम, मेरे आपके तजर्बात, मेरा अपनी अकल को इस्तेमाल करना और उसके नतीजे में ये जानना, इस कंक्लूजन को ड्रॉ करना कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये अपने अंदर बेपनाह डिसिप्लिन कंट्रोल रखती है। सुबह एन टाइम पे होती है, शाम एन टाइम पे होती है। मेरे और आपके और स्टूडेंट्स की तरह ऐसा नहीं होता कि क्लास शुरू हो रही 8 बजे और 8:15 बजे पहुँच रहे हैं। खुर्शीद साहब सूरज एंड टाइम पे निकलते हैं और खुर्शीद साहब एंड टाइम पे गुरूब होते हैं, खुर्शीद सूरज को कहते हैं। तो इसी तरह से हमारी फसलें ये उगती हैं, हमें यकीन होता है कि हम बीज बोएंगे, पानी देंगे, हल चलाएंगे, सूरज की रोशनी पड़ेगी और पानी नहीं देंगे, बारिश होगी और फसल उगेगी। हमेशा ऐसा होता है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि ये सब कुछ हो गया और मालूम यह कि फसल साहब उगई नहीं, नहीं होता है। मालूम हुआ कि पूरी इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं बेपनाह डिसिप्लिन है, बेपनाह रुबूबियत है, हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। भाई साहब, मुझे और आपको भूख लगती है, हमारी भूख खाना मांगती है। ये खाना पता कैसे हमें मिलता है? ऐसे मिलता है जैसे कि मैंने अभी बताया कि फसल उगती है, और उगती है इत्तेफाक से नहीं, इस दुनिया में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि उसका उगना लाजिम हो जाता है। तो हमें यह महसूस होता है कि इस दुनिया में रुबूबियत है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, इस दुनिया में रहमत है, हमें बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मुआवजे के नेमतें मिल रही हैं। ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है, इसमें हिकमत है, विजडम है। तो चुनाचे जब इंसान संजीदगी से, दयानतदारी से गौर करता है तो वो ये महसूस करता है कि यहाँ कुदरत है, यहाँ रुबूबियत है, यहाँ रहमत है, यहाँ हिकमत है। तो लाजमन एक कदीर, एक रब, एक रहमान और रहीम, एक हकीम हस्ती मौजूद है। इंसान गौर करता है तो इस नतीजे तक पहुंचता है। पहले से उससे मिलके तो आया हुआ होता है, वो तो मुलाकात तो हो चुकी है। तो इन दोनों का यूँ समझिए कि एक ऐसा मिलाप हो जाता है कि आदमी कहता है कि यार, जो मुझे खारिज में बात नज़र आ रही है, दाखिल में भी उसी के लिए मेरे अंदर ताईद मौजूद है। तो आप यूँ समझिए कि नूर नाला नूर हो जाता है, रोशनी पर रोशनी हो जाती है।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो गया, हम एक ब्रेक लेते हैं। सामिंग, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट ब्रेक।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. Ki Duniya, Ki Duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आज के इस फैकल्टी और में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मियां बाजर शहबाज एंड मिस फाइका कदाफी, और आप सुन रहे हैं एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में। अब हम पूछते हैं मिस्टर बाजफ शहबाज साहब से कि आपका एज प्रेसिडेंट क्या रोल है, और हम एज स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आप किस तरह से कोलैबोरेटिव रोल अदा कर सकते हैं फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में।
2: जी थैंक यू शहूक। देखें, इस सारी एसोसिएशन का जो मकसद है ना, वो टू टियर है। पहला मकसद जो है वो इसका स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पढ़ रही हैं, और दूसरा मकसद जो है वो इसका अलुमनाई है। तो हमने अपने रोल को भी उसी तरह से डिवाइड किया हुआ है, और उसमें जो है वो जो बाकी चार सेक्टर्स हैं ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी तौजीह के लिए मैं बताता चलूँ कि दरअसल यहाँ पे जो हर अलुमनाई बॉडी है, जो हर फैकल्टी है, उसके टोटल 5 मेंबर्स हैं या 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक सदर है और 4 जो हैं वो नायब सदूर हैं। उसमें से एक नायब सदर जो है वो एंगेजमेंट है, एक प्लेसमेंट, एक रिसर्च एंड इनोवेशन, और एक एंडाउमेंट है, और उसके ऊपर जो है वो एक प्रेसिडेंट है। तो बेसिकली जो ये सारा आइडिया था अलुमनाई एसोसिएशन का, उसकी कोर में ये है कि इन चार सेक्टर्स के ऊपर यूसीपी की जो लीडरशिप है वो समझती है कि अलुमनाई जो है वो इदारे को हेल्प आउट कर सकते हैं, और उसके अंदर ये किया गया कि उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट जो है उसका सुपरवाइजरी रोल है। सो मेरे साथ जो मेरे चार वेरी कैपेबल वीपीज जो मौजूद हैं, हम उन चारों को मिला के और मेरी मौजूदगी में हम फोकस हमारा होता है उन चारों सेक्टर्स के ऊपर। जिस तरह
1: वो चार लोग कौन, उनको भी प्लीज आप इंट्रोड्यूस करवाएं।
2: जी बिल्कुल सर, हमारे पास जो वीपी एंगेजमेंट है वो राना हमजा है, वो भी पाइनियर बैच से है, सीनियर मोस्ट बैच से। इस वक्त वो संपत एंड संपत लॉ एसोसिएट्स में जो है वो क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं मेनली। फिर उसके बाद वीपी प्लेसमेंट तो हमारे पास ही मौजूद है इस वक्त। वीपी एंडाउमेंट हमारे पास मौजूद हैं शाहिद हबीब, वो भी पाइनियर बैच से ही हैं, और वो इस वक्त अपनी पार्क 360 के नाम से टूर ट्रैवलिंग एजेंसी जो है उसको ऑपरेट करते हैं। और फिर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन है शारिक अहमद, जो कि इस वक्त एक वन ऑफ द रिनाउंड लॉ फर्म्स है CLM कॉर्नेलियस लीन एंड मुफ्ती, उसमें वो रिसर्च एसोसिएट हैं। सो ये इन चारों मेंबर्स की जो टीम है, ये ही सारे मेरे बाजू हैं, जिसकी वजह से जो है हम इस एसोसिएशन को चलाने के काबिल हो रहे हैं।
1: तो मिस फाइका, आप एज वाइस प्रेसिडेंट प्लेसमेंट जो है वो काम कर रही हैं, तो आपका इसके बारे में क्या इनिशिएटिव्स हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं जो भी आपने प्लान किए हैं?
3: अच्छा शहू, कैसे है बेसिकली कि जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं खुद जो है अपनी फैमिली से फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो हम लोगों ने जो एक फील्ड में जाके चीज़ देखी वो ये थी कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं जब वो अपने लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी देखते हैं इन दी फील्ड ऑफ लॉ, क्योंकि ये बाकी फील्ड्स की तरह नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट है। हमारे दो एरियाज हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते, एक साइड है कॉर्पोरेट की और एक साइड है लिटिगेशन की, जिसमें आपकी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट प्रैक्टिस बेसिकली आते हैं, और कॉर्पोरेट जॉब जो आपकी 9 to 5 ऑफिस में होती है। अब स्टूडेंट्स सब जो हैं उनके माइंड में सिर्फ जब हम एडवोकेसी की बात करते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट आता है, एंड वो है जी कोर्ट में जाके वकालत करना, एंड दैट्स इट। अब इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, जैसे हर चीज के होते हैं। सो बेसिकली जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये दो फर्क समझा सके बिटवीन द लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट, ताकि वो ये चीज देख सकें दोनों एरियाज में, आइडेंटिफाई करना कर सकें कि वो जब यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो वो क्या करना चाहते हैं, वो उस चीज के बारे में सोचें, तय करें, डिसीजन लें। फिर देन उस हिसाब से जो हम जाहिर सी बात है उनके लिए आगे प्लान करेंगे वो ये होंगे कि हम डिफरेंट जो है लॉ फर्म्स कंपनीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम जो है एक लॉ फेयर होता है जब हमारा जो मोस्ट बैच ग्रेजुएट हो रहा होता है हर साल, उसके लिए रखा जाता है। उसमें जो है डिफरेंट कंपनीज और फर्म्स वगैरह आती हैं जो कि बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑफर करती हैं। इंटर्नशिप जो है बेसिकली वो तो यूसीबी भी आपको ड्यूरिंग योर 8th सेमेस्टर जो है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर करती है, तो उसमें भी बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प आउट तो इनिशियल स्टेज पे ही हो जाता है कि वो शायद थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन इवन अदरवाइज हमारा अब जो मेन एम है वो ये है कि हम उनको थोड़ा पहले से अर्लियर स्टेजेस के ऊपर ये डिफरेंस समझा के, और जो है उसके बाद उनको इस चीज के ऊपर मोटिवेट कर सकें कि हम उनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज निकालें, वो जाएं ड्यूरिंग समर जो है वो वहां पे जाके इंटर्नशिप्स करें, और वो फिर अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सके, ताकि जब वो ग्रेजुएट हो जाए तो उनको पता, उनका एक जो वे आउट ऑफ अ क्लियर हो और उससे पहले उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो थ्रू दोज इंटर्नशिप्स।
1: इसमें आप स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको किस तरह से ऑन बोर्ड ले रहे हैं, किस तरह से आप उनके लिए काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं?
3: अभी जो है हम लोगों के सेशंस जो है हमने प्लान जरूर किए हैं, लेकिन अभी तक आप ये कह लें कि अभी तक कोई भी एक्शन में नहीं आया, क्योंकि बहुत रिसेंटली अभी फरवरी में हमारी एल्यूमिनाई बॉडी जो है वो बनी है, अभी उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, फॉर्मल बॉडी जो है वो बनी है। तो अभी हमारे जो है वो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ जो है हम लोगों के सेशंस वगैरह स्टार्ट होंगे, जिसमें जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम डिफरेंट लॉ फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे उनके साथ, और अपनी जो हमारी ऑलरेडी ग्रेजुएट जो पंजाब लॉ कॉलेज के भी हिस्सा रह चुके हैं हमारे सीनियर्स, उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करके उनको लेके आएंगे, ताकि वो बच्चों को जो चैलेंजेस जो हर्डल्स उन्होंने फेस किए हैं सबसे पहले उनसे जो है उनको वो बता सके, क्योंकि बच्चों को जो एक बहुत ज्यादा चीज इस टाइम पे जरूरी होती है ना, वो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, कि उनको हम इतना मोटिवेट कर सके कि उनको पता हो कि जब वो फील्ड में जाएंगे तो उन्होंने जाते साथ, क्योंकि फील्ड की जो आपकी रियलिटी है वो पहले किसी को नहीं पता होती, तो जब वो जाते हैं फील्ड में तो घबरा के कुछ बच्चे क्विट कर जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करना ये जरूरी है कि आपने जो है 6 महीने एटलीस्ट कुछ ना करके भी आपने अपने ये जो क्विट करने वाला आइडिया ना आपने आने नहीं देना माइंड में, आपने अपनी डेडिकेशन के साथ जो है वो 6 मंथ्स आपने सर्व करना आइदर इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट और लिटिगेशन, और देन जो है जब आपके पास आपका लाइसेंस होगा तो आपके पास हमेशा जो है वो चेंज करने की अपॉर्चुनिटी तो रहती है, राइट? तो
1: इसमें आपको लगता है कि क्या सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो अभी ऑनगोइंग बैच है उन्हीं को ही आपकी ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, या जो जूनियर्स हैं उनको भी एकेडमिक सपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ जिसमें एज एलुमनाइज आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी में या वो किस वाइस प्रेसिडेंट के अंडर या वो किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे?
3: वो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट प्लेसमेंट जो कि मेरी सीट है उसी के अंडर आता है मोस्टली, लेकिन ऑब्वियसली एज एल्यूमिनाई बॉडी हम जो है अपने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर हमारी पूरी टीम ही इस चीज के ऊपर काम कर रही है, और बिल्कुल जूनियर्स इस चीज में आते हैं, जूनियर्स को भी हमारा जो एक एम है, इवन जो है जो कमिंग सैटरडे है उसको हम उस डेट के ऊपर हमारा मेन एम यही है कि हम फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने हैं। मॉक इंटरव्यूज में हम उनको जो है इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो आप जब फील्ड में जाते हैं कोई लॉ फर्म है कोई कंपनी है तो वहां पे जाके बच्चे इंटरव्यू स्टेज पे बहुत ज्यादा जो है वो घबरा जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू में क्या सवाल आ सकता है क्या नहीं, क्योंकि एक ऑलरेडी उनके जो है पहले ही वो बहुत ज्यादा नर्वस हुए होते हैं कि अच्छा क्या पूछ लेंगे, ऐसा क्या पूछ लेंगे, ये सेक्शन पूछ लेंगे तो मुझे नहीं पता होगा। सो बेसिकली उसकी जो है हम उनको प्रिपरेशन करवाएंगे, तो ये हमारा जो है जो जूनियर बैचेज है उनसे स्टार्ट होगा, और जो मोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो मोस्ट रिसेंट ग्रेजुएटिंग बैच होगा उनका थोड़ा तरीकाकार होगा और होगा, उनको हम एक अच्छी सीवी ड्राफ्ट करना सिखाएंगे, उनका जो हमारा मेन फोकस होगा, उनको हम ये बताएंगे कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी कैसे हैं, क्या तरीकाकार है जिससे अब आप, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल अपना क्योंकि ग्रेजुएट होने वाले हैं उनको तो जॉब्स की जरूरत है, वो जॉब ढूंढनी कैसे हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनको वो अप्रोच करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या जॉब्स जो हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा जब उन्होंने ढूंढ ली अपनी एक उनको लग रहा है कि जी ये जॉब मेरे लिए है, तो उसमें आपने एक कवर लेटर अपना कैसे अच्छा बनाना है, आपने अपनी कैसे जो है एक अच्छी सीवी बनानी है, जिसके बाद आपकी जो इंटरव्यू स्टेज है उसके लिए तो मैंने आपको बताया है कि उसके लिए तो हम उनको तैयार कर ही रहे हैं साथ साथ।
1: जी बहुत शुक्रिया सामिन, आपने अभी सुना प्रेसिडेंट एलुमनाई एसोसिएशन और वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन फैकल्टी ऑफ लॉ के क्या रोल्स हैं। अब एक छोटे से वक्फे के बाद हम बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं या बाकी के जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनकी क्या इसके अंदर ड्यूटीज हैं वो प्रेसिडेंट से पूछेंगे, और फर्दर क्या गोल्स हैं एलुमनाई एसोसिएशन के वो भी वाइस प्रेसिडेंट से पूछेंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। आज के फैकल्टी और में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मियां बाज़ शहबाज एंड मिस फायका कदाफी। और आज के इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर बात हो रही है एलुमनी एसोसिएशन फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में, और अभी तक अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्लेसमेंट के बारे में जो है पूछा है। और इसके बाद मजीद जो हमारे साथ इस वक्त बाकी के तीन वाइस प्रेसिडेंट्स इस पैनल के मौजूद नहीं है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आने वाले शोज में तशरीफ लाएंगे, उनके क्या रोल्स हैं उनके बारे में हम प्रेसिडेंट से पूछेंगे कि एज एंडाउमेंट क्या रोल है, आप कुछ स्कॉलरशिप्स प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, या बाकी के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनके क्या रोल्स हैं।
2: चलें फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी वाइस प्रेसिडेंट एंडाउमेंट से। देखें एंडाउमेंट का जो ये एक हमने एक सेपरेट जो सेक्टर रखा हुआ था जो यूसीपी लीडरशिप ने जो सोचा उसको, उसके पीछे कुछ एम्स हैं और वो गोल्स जो हैं वो ये हैं कि कुछ स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं ऑल्दो, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन केसेस कि यूसीपी के वैसे तो इस वक्त जो है आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड के ऑलमोस्ट 53% स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी यूसीपी की स्कॉलरशिप की कैटेगरी में फॉल करते हैं और उन्हें किसी ना किसी हद तक, चाहे वो 25-100% स्कॉलरशिप्स जो हैं वो उनको मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही थोड़ा सा सेक्टर होता है कि जो स्टूडेंट्स का जो कि हार्डशिप केसेस होते हैं, जो कि फॉर सर्टेन इंस्टेंसेस वो अपनी जो है वो फीस को कवर नहीं कर पा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ना समझने की जरूरत यह है कि अगर यूसीपी इतनी ही स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है तो फिर अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उसको भी अवेल नहीं कर पा रहा, मेरिट स्कॉलरशिप्स को अवेल नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट का जो है वो कसूर होगा। ऐसा मैं भी सोचता था, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि जब मैं पढ़ता था कि जो अपना CGPA या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मेंटेन कर पा रहा तो उसमें किसी और चीज का कसूर नहीं, उसका अपना कसूर है। लेकिन मैं गलत था। वक्त गुजरने के साथ मैंने कुछ लोगों को मिला और मैं रियलाइज किया, और यूसीपी की जो लीडरशिप है उससे भी हमने ये स्टोरी सुनी कि एक स्टूडेंट है बिलफर्स्ट, अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अचानक से उसके घर में कोई ऐसे क्राइसिस आ गई हैं कि जिसको जो उसके कंट्रोल से बियॉन्ड है, और ऐसी सूरत हाल में लेट से कोई बीमारी आ गई है, उसके वाले साहब की जो जॉब थी वो खत्म हो गई है, जो फाइनेंशियल उनके जो खुदा न ख्वास्ता किसी पेरेंट की डेथ हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में उस स्टूडेंट को जो लेट से कि फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में है, डिग्री कम्प्लीट करने के बिल्कुल करीब है, उसके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं रहे अपनी डिग्री को कम्प्लीट करने के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में हम उस इशू को कैसे कैटर कर सकते हैं। इसी के लिए एक स्पेशलाइज्ड एंडोमेंट फंड बनाया गया है कि जो कि देखता है कि जो यूसीपी की अलुमनाई हैं या जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं वो हमें उस फंड में जो है वो कुछ ना कुछ फंडिंग करें, ताकि हम उन स्टूडेंट्स को जो कि इन कैटेगरीज के ऊपर फॉल करते हों हम उनको जो है वो फैसिलिटेट कर सकें। पिछले दो सालों के अंदर जो अलुमनाई एसोसिएशन की बॉडी थी उसने 17 स्टूडेंट्स की एजुकेशन में उस तरह से हेल्प आउट की है, और पिछले दो सालों में 2.2 मिलियन रुपीज जो थे वो हमने एंडोमेंट फंड्स के लिए इकट्ठे किए, जो कि इवेंचुअली उन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए इकट्ठे हुए, हमने नहीं, हमसे प्रीवियस एसोसिएशन ने। इस साल हमने अभी सिर्फ, जिस तरह से मिस फायका ने बताया आपको कि अभी हमने इस बॉडी को सिर्फ स्टार्ट ही किया है, और अभी हमारे कुछ जो है वो भी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो भी इन एक्शन नहीं आ सके हैं। अभी इस एसोसिएशन ने सिर्फ एक ग्रैंड इफ्तार जो था फॉर अ कॉज एंडोमेंट फंड्स के लिए हमने किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने सिर्फ एक इवेंट में 1.3 मिलियन के जो हैं वो हमने प्लेज फॉर्म्स इकट्ठे किए थे, और तकरीबन ओवर 9 लाख रुपीस जो हैं वो ऑलरेडी यूसीपी के एंडोमेंट फंड में हमारी एसोसिएशन आने के बाद जो है वो आ चुके हैं। सो यही जो प्लान है इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है फैकल्टीज में, जो कि हमारे वीपी एंडोमेंट शाहिद हबीब हैं जो इसके ऊपर फोकस्ड हैं कि किस तरह से हम अपने लॉ अलुमनाई को जो है वो इस चीज़ को रियलाइज करवाएं कि उनके जो पैसे यूसीपी के एंडोमेंट फंड में जाएंगे वो किसी एक बच्चे का जो मुस्तकबिल तारीख हो रहा है उसको जो है वो रोशन करने में कामयाब आएंगे, और ये कर्ज हसना के तौर पे होगा। कल को जब वो बच्चा फील्ड में आएगा, खुद प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो वो खुद बाकी अपने जैसे बच्चों की कंट्रीब्यूशन में उनको हेल्प आउट करेगा।
1: बहुत ही बेहतरीन कॉज है इस पोजीशन के ऊपर। इसी तरह आप एंगेजमेंट और रिसर्च के बारे में भी प्लीज बताइए।
2: अच्छा, अब अगली हम बात करते हैं वीपी एंगेजमेंट के हवाले से। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट एंगेजमेंट है ना, उसका रोल बाकी फैकल्टीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी फैकल्टी में हमें कुछ अर्से या एक महीने पहले तक लगता था कि शायद उतना रेलिवेंट नहीं है। वीपी एंगेजमेंट का पहले रोल समझें क्या है। देखें रोल उसका ये है कि जो हमारे बिछड़े एलुमनाई हैं उनको ढूंढ निकाल कर इकट्ठा करना। हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त प्रेसिडेंट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर अमजद अली भट्टी साहब हैं, वो यूसीपी के ग्रेजुएट हैं सन 1991 के।
1: अच्छा,
2: अब ये देखें एक बड़ी बात है कि आज से 34 साल पहले वाला ग्रेजुएट जो है वो हमारी एलुमनाई बॉडी का जो है वो इस वक्त मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी रोल को जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए हमारी फैकल्टी फ्लॉ के परस्पेक्टिव में अगर बात करें तो मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता देता हूँ कि हमारे तो टोटल ग्रेजुएट्स जो हैं वो 233 हैं, और अगर आप मुझसे किसी एक भी ग्रेजुएट का पूछें कि फलाना ग्रेजुएट इस वक्त क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि वो आजकल जो है वो किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, वो वकालत में है या नहीं है। तो हमारी जो एंगेजमेंट है ना वो ऑलरेडी फुली एक्टिव है। इसके लिए हम एक नए प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक स्पेशल शो हम आपके साथ ही करना चाहेंगे
1: जरूर इंशाल्लाह।
2: वो ये है कि हमारे बेसिकली आप समझते हैं कि जो फैकल्टी ऑफ लॉ है ये एक न्यू फैकल्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने पहले जो लॉ की फील्ड है उसमें लीगल एजुकेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किया। पंजाब लॉ कॉलेज तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जो है वो लाहौर में मुस्लिम टाउन में मौजूद था, और उसने बेशुमार ग्रेजुएट्स जो कि इस वक्त हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, पॉलिटिशियंस, टॉप कंपनीज के जो हैं वो लीगल डायरेक्टर्स, वो सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हम अभी तक उनको यूसीबी के प्लेटफॉर्म से रिकॉग्नाइज नहीं कर सके। और जो यूसीबी जो पंजाब लॉ कॉलेज था उसका जो है वो अलुमनाई स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग था नहीं। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब हम उन लोगों को जो है वो यूसीबी के लीडरशिप के अप्रूवल के बाद हम उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज करवाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वीपी एंगेजमेंट है उनका काम बहुत वसी पैमाने पर बढ़ जाएगा। देखें, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू शहूक, आज के दिन में अगर हम बात करें तो जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं दे आर नॉट इन द पोजीशन टू हेल्प आउट अदर स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेसमेंट्स और एंडोमेंट्स, बट दोज पीपल हु आर इन सच हायर पोजीशंस दे डेफिनेटली कैन हेल्प यू। सो इफ वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज देम एज यू नो द पार्ट ऑफ द यूसीपी, देन डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग ऑन देयर वे जो उनकी वजह से हमारे एलुमनाई को मिलना शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाई द वीपी, द रोल ऑफ वीपी एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Also, I would just add on to one thing which Faika Malik had recently said कि हमारी जो litigation और corporate side, हमारा इस आपस में जो एक consensus है वो भी इसी चीज़ के ऊपर है कि जो placement वाली side है ना, चूंकि UCB के जो बाकी faculties हैं they are well established in making connections with the corporate sector, तो placement को ज़्यादातर हम वहाँ पे करेंगे ताकि in-house counsel की जो positions हैं हम उसको बढ़ा सकें। VP engagement दूसरा काम इसलिए भी कर रहे होंगे कि जब हम अपने उन alumni को जो कि पंजाब लॉ कॉलेज है उनको फील्ड में आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उनकी लॉ फर्म्स के साथ जो हैं उनकी प्लेसमेंट के अंदर जो यूसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम असिस्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह बहुत कम अरसे में हम एक बहुत जो एक वास्ट जो फील्ड है हम उसको जो है वो जोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, इसी तरह आप रिसर्च और इनोवेशन के बारे में भी ज़रूर हमें गाइड करें, और बल्कि इसमें सेम मेरा क्वेश्चन रहेगा जिस तरह से मैंने वीपी प्लेसमेंट से भी पूछा कि आप जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या स्कोप है इस डिपार्टमेंट के अंदर।
2: बिल्कुल, देखिए रिसर्च एंड इनोवेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट, और इसके अंदर जो हमारा मकसद होने वाला है वो ये है कि जो कि यूसीबी की जितनी भी आप जानते हैं कि देखिए हमारे आखिरी साल में रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं, और वीपी रिसर्च एंड इनोवेशन का काम टू फैक्टर्स में, एक तो ये कि फील्ड की रिसर्च, और दूसरा ये है कि जो आपके स्टूडेंट्स में एकेडेमिया में जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ की रिसर्च। तो बेसिकली रिसर्च एंड इनोवेशन दो डिफरेंट चीज़ों पे है। इस शख्स का काम ये होगा कि फील्ड के अंदर नए नए एरिनाज जो हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हेल्प आउट, उनको इंटर्नशिप्स करवाए जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस में एक डिजिटल टेक फोरम है जो कि लॉ से रेलिवेंट है जिसका नाम लेग्जा है, मैं उसका लाहौर के डिवीजन का लीगल हेड भी हूँ। उसका काम क्या है कि वो एक पाकिस्तान लॉ साइट की तरह एक लीगल डेटाबेस की जो है वो फोरम है, और वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई को यूज़ करते हुए या लॉयर्स जो हैं वो एआई को यूज़ करते हुए अपने जो कोई भी कीवर्ड्स पुट करेंगे और उसके मुताबिक उनको जो है वो लीगल आंसर्स मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट्स। अब हमारा जो टारगेट है, जो वीपी रिसर्च एंड इनोवेशन की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस तरह के ही सारे फोरम्स को ढूंढना और उनके साथ यूसीपी के स्टूडेंट्स को कनेक्ट करवाना है ताकि उनको वहाँ पर इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स और ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो वहाँ पर आ सकें। इसी तरह से अभी आप देख रहे हैं कि अप्रैल में ही हमारी एक इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस जो है, आई बिलीव 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फैकल्टी ऑफ लॉ में हो रही है। तो उसके अंदर हम ये करने वाले हैं कि जो लॉ फर्म्स जो कि रिसर्च के अंदर स्पेशलाइज करती हैं हम उनके साथ जो है वो कोलेबोरेट करेंगे, उनको इन्वाइट करेंगे कि आया वो यहाँ पर या तो रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करें अपने, या फिर आके एज एन ऑडियंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, और वो अपने एक्सपीरियंस से बाकी कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को बताएंगे कि कौन कौन से लीगल टूल्स हैं जो इस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं जो कि रिसर्च में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से हमारा जो प्लान है कि जो आखिरी साल वाले स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके, उनको हम एसोसिएट करवाएं उन स्पेशलाइज्ड फर्म्स के साथ जिस पर्टिकुलर रिसर्च के टॉपिक पे वो काम करना चाह रहे हैं, एंड शारिक बीइंग द यू नो वर्किंग एट द टॉप लॉ फर्म CLM जिसका काम ही मेनली रिसर्च का और लिटिगेशन का है, सो ही इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिलीवर यू द रिजल्ट्स वेरी सून कि किस तरह से जो है वो लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनको कैसे वो असिस्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह।
1: जी मिस फाइगा, अभी वाजिद साहब ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है वो जिक्र किया है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए इसका क्या बैकग्राउंड है और इसके अंदर आप लोग एज एलुमनाइज क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बार, इस साल इसका क्या टॉपिक है?
3: ओके, सो बेसिकली शुरू किए जो है अब हमारी इस बार 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक एविडेंस। और इसमें जो है जब हम स्टूडेंट्स थे तब से ये जो है हमारी फर्स्ट जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी बीइंग स्टूडेंट्स हमने जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट ये किया था कि हम लोगों ने रिसर्च पेपर्स वगैरह के थ्रू जो है रिसर्च आर्टिकल्स के थ्रू जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था। और इस साल भी हमारा एम यही है कि हम डिफरेंट जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड और फोरेंसिक एविडेंस से रिलेटेड जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जितने भी जो आप ये कह लें के नामवर जो हैं वकला हैं और जो इनके ऊपर इस फील्ड के ऊपर काम कर चुके हैं, जिनके पास इल्म है इससे रिलेटेड के ये जो है किस तरह से इसको टैकल किया जाता है, क्या इश्यूज हैं, क्या इससे रिलेवेंट जो है लॉज हैं, ठीक है, तो उनको जो है हमारा मेन जो एम है उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको इनवाइट करना है, उनको इनवाइट करना है ताकि जो है लोगों को इस पर सबसे क्योंकि आजकल जो है साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत जो है मेजर जो है इशू है आजकल के, जाहिर सी बात है आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एक नया मोड़ ले रही है, उसकी उसके साथ ही उसके इश्यूज भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस देना और ये जो है एक मेन पर्पस है हमारी 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का।
1: और फाइका, एंड पे मैं बिल्कुल आपसे चाहूंगा कि जो फाइनल बैच है जो इस वक्त पास आउट होने वाला है उसके लिए क्या आपकी सजेशंस हैं और आप कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे आप चाहती हैं कि वो फोकस करें इस वक्त?
3: इस वक्त मेरी जो सजेशन है जो हमारा मोस्ट रिसेंट बैच जो ग्रेजुएट होने वाला है UCP से, उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि वो सबसे पहले तो अपनी लिंक्डइन आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि प्रोफेशनल जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है टूवर्ड्स यू नो गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कनेक्टिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको के स्टूडेंट्स यूज़ करके एक तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह की जॉब जो है वो देखना चाह रहे हैं। उसके ऊपर अब लिंक्डइन के ऊपर अब एक CV बिल्डिंग की भी ऑप्शन हमें आती है जिसके ऊपर वो हमें प्रॉपर जो है CV अपनी बिल्ड करनी सिखाते हैं, हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी हमने अपना एक एकेडमिक जो है करियर में जो भी चीज़ें हमने अचीव की हैं, जितनी भी अचीवमेंट्स वगैरह हमारा CGP, अगर हमने कोई रिसर्च आर्टिकल किया, अगर किसी ने कोई TA-ship की है, किसी के पास कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें हम उस पर जो है मेंशन करके एक अपनी अच्छी प्रोफाइल वहाँ से बिल्ड करके एक अच्छे जो है कंपनीज और डिफरेंट लॉ फॉर्म्स के साथ कनेक्ट करके वो जो स्टूडेंट्स हैं अपना एक करियर पाथ खुद भी बहुत इजीली वो उसको चूज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उस पर वो खुद ग्रोथ कर सकते हैं, खुद उनकी डेवलपमेंट हो सकती है वहाँ पे। तो एक तो मैं उनको ये सजेशन दूंगी। सेकेंड सजेशन जो है वो मेरी उनके लिए ये होगी कि मोस्टली हम भी जब स्टूडेंट्स थे तो हमें लगता था कि CV जितनी लेंथी हो, जितनी बड़ी हो, उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमारे एम्प्लॉयर को जो है ना वो हमारे में उनको होगा कि अच्छा इसने तो बड़ा काम किया हुआ है, और उसी सब में हम जो है मोस्टली उसमें ऐसी बातें लिख देते हैं जिनका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरी सेकंड एडवाइस या सजेशन आप ये कह लें वो उनको ये होगी कि स्टे ऑनेस्ट। अगर आपने थोड़ा भी काम किया लेकिन आपको उसके ऊपर ग्रिप है, आपको उसके ऊपर नॉलेज है, आप सिर्फ उतना लिखें, आपकी CV जो 1 pager भी है डैट इज़ मोर देन अनफ। अगर वो आप उसके आपने उसमें सिर्फ वो चीज़ें लिखी हैं जिनका आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई बहुत बड़ी एक CV की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ से नहीं घबराना कि वो हमारे पास तो पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के पास भी नहीं होता। जो आपने काम किया है आप उसके बारे में लिखें, सच्चाई लिखें और जो है उसको आप जो है फिर आगे प्रेजेंट करें। और थर्ड यही है कि आपकी इस स्टेज के ऊपर जो है आपने अपना जो फोकस है वो ज़्यादा अपने एकेडमिक करियर पे ही रखना है, ज़्यादा फील्ड की भी टेंशन नहीं लेनी है कि आप उसको छोड़ के आपके, क्योंकि अभी भी आपका जो है जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें आपकी बहुत जो है अहम सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप जो है अपनी ग्रिप रखें और जो है जैसे ही आपका ये होगा तो फिर देन आपको फील्ड का जो है फील्ड के साथ साथ ही जब आप आएंगे फील्ड में तो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो आपको वहीं पे आके जब आप फील्ड में पांव रखते हैं तो आपको वहाँ सीखने के लिए मिल जाती है, तो पहले उसकी टेंशन ना लें।
1: जी बिल्कुल ठीक। जी बादल साहब, आपसे भी मेरा सेम ही क्वेश्चन है, और इन एडिशन टू द प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि प्लीज़ ये बताइए कि स्टूडेंट्स जब फील्ड में जाएँ तो वो किस तरह से अपने आप को जो मौजूदा लॉयर्स हैं उनसे किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं?
2: देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर अंडरस्टैंड की जरूरत है ना, क्या पहले हम सुनते थे कि ग्रेजुएशन के बाद डिप्रेशन होते हैं, बट आई हैव टू टेल यू दैट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने किस तरह से अपने जूनियर्स को जो है वो उसमें फैसिलिटेट करने के वो उनको इतना ज़्यादा ना हो। आई हैव सीन मैनी शाइनिंग स्टूडेंट्स ओवर द लास्ट टू ईयर्स जो कि सिर्फ इस फील्ड के डिप्रेशन की वजह से छोड़ के घर बैठ गए। आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन टू एनी अदर यंग स्टूडेंट नाउ। अब इसमें होता क्या है, कर कैसे सकते हैं? देखिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस के जो मेयार हैं उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएँ। जब आप UCP के एक जो है वो ज़बरदस्त फैसिलिटीज से आप एक कोर्ट की लाइफ में जाते हैं, हमारे दोस्त कहते होते हैं कि UCP के ACOs से निकल के जब आप LDA सिविल कोर्ट की जो है वो छठे फ्लोर पर सीढ़ियों से जाते हैं, क्योंकि अगर आप लिफ्ट से जाएंगे तो आपको खदशा है कि आप उसमें बेहोश हो जाएंगे हबस से, तो फिर आपको पता चलता है कि वकालत क्या है। लेकिन उसमें आपको हिम्मत करनी है, आपको ये नहीं सोचना कि फलाना शख्स जो है वो कंपनी के अंदर बैठा वो तो तनख्वाह ले रहा है और मुझे जो है वो आने जाने का फ्यूल भी नहीं मिल रहा, बिकॉज दीज आर द रियल थिंग्स। ऐसा होगा, आपने ये सोचना है कि अगर मैं इस फील्ड को अपने शुरू के 3 से 4 साल दयानतदारी से दे गया तो ये फील्ड आपको बहुत कुछ देने का जो है वो मतलब कि इसमें पोटेंशियल मौजूद है। कुछ लोगों का वो जो कमाने वाला जो सर्कल है वो जल्दी शुरू हो जाता है, कुछ का देर से होता है, होता ज़रूर है। एक शाम आती है, उस शाम के बाद सारे जो आपके बादल छाए होते हैं ना ज़िंदगी के वो उतर जाते हैं और पैसों की भी रेल पेल होना शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कुछ लोग हैं जो कि इस फेज़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं और कुछ लोग बाकी जो हैं वो आ जाएंगे। तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि फोकस्ड रहना है, ये नहीं सोचना कि उसको उतनी फीस मिल गई और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ये देखना है कि मैं क्या सीख रहा हूँ और वो सीखना उसका फ़ायदेमंद कितना है बस। और हाँ, पहले सारे आपको जो जितने टीचर्स थे हमारे वो कहते थे हमें कि आपको जो है वो सारे के सारे लिटिगेशन सीखें जी, सारी के सारी फील्ड्स को पहले सीखें 3-4-5 साल, मैं कहता हूँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्पेशलाइजेशन का दौर है, अपनी एक फील्ड जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करें, चाहे वो एक पर्टिकुलर लॉ या एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट क्यों नहीं है, और उसमें अपने आप को इतना माहिर गिनवाएं कि उसके अलावा जो है आपके अलावा किसी और शख्स का ख्याल भी ना आए बतौर वकील, तो आप समझिए कामयाब हो गए।
1: थैंक यू सो मच बादल साहब और फाइका साहिबा, आपने आज ज्वाइन किया रेडियो पे और एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो शो आपने आपके साथ आज हुआ और एलुमनाई एसोसिएशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने ज्वाइन किया। सामेन, आज के प्रोग्राम में आपने सुना फैकल्टी ऑफ लॉ एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में, क्या उनके रोल्स हैं और किस तरह से वो इसको आगे मजीद लेकर चलेंगे, क्या उनके फ्यूचर गोल्स हैं। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हम फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के असातिज़ा से एकेडेमिया, फैकल्टी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग स्किल, मीडिया ट्रेंड्स, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, आर्ट, PR, एंटरप्रेन्योरशिप और जैसे अहम मौजूदात पर गुफ्तगू करते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान खास मौजूद हैं, उनकी शख्सियत का तारुफ करवाते हुए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं है बल्कि वो एक फिल्म मेकर हैं, और बहुत ही काबिल फिल्म मेकर हैं, जो बहुत अवार्ड याफ्ता हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से हकीकत में कहानियों को किस तरह से नरेट किया जा सकता है, सोच से हकीकत तक का सफर बड़े अच्छे से कैमरे के थ्रू, कैमरे के लेंस के थ्रू अपने नाज़रीन तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
2: सर उमर सईद कुरैशी फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, लेक्चरर हैं और साथ BS कोऑर्डिनेटर भी हैं। सर आपका सफर एज अ फिल्म मेकर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कैमरा और लेंस और कैमरे की आंख क्या कहती है ये दिखाना?
3: मेरे ख्याल से इट ऑल स्टार्टेड जब मैं छोटा था, और मैंने एक दफ़ा जो एक ब्लरी मेमोरी मेरे माइंड में आती है कि मेरी वालदा हमारी पिक्चर्स लिया करती थी, और उन्हें बड़ा शौक था, वो लाहौर से एक रील लाती थी और वो अपने कैमरे में डालती थी। उसके बाद जब वो पिक्चर लेती थी तो मुझे हमेशा से याद है, वो कहती थी कि आप दीवार से ज़रा दूर खड़े हों, पौधों से ज़रा दूर खड़े हों। शायद उन्हें एक्चुअल वर्ल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड का तो नहीं पता था, बट उन्हें कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा लाजमी था कि जब वो हमें खड़ा करती थी दीवार से दूर, तो जो भी सनफ्लावर्स थे या दीवार थी वो हमेशा ब्लर सी आती थी। तो मुझे वो मेमोरी तब भी याद है कि बचपन में कैसे हमारी पिक्चर्स ले रही होती थी, और मुझे लगता है वही रीज़न था कि जब मैं बड़ा हुआ पहली दफ़ा FSC में गया, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मुझे थोड़े पैसे मिले, तो जो मैंने पहली चीज़ ली वो मैंने अपना कैमरा लिया। और उससे पहले भी जो मेरे पास सेल फोन्स होते थे, मैं हमेशा वो सेल फोन लेता था जिसका कैमरा हमेशा अच्छा होता था, और वो कैमरे से पिक्चर्स ली, अपने पेंटियम 1 में डाली और उसे एडिट किया। एक सॉफ्टवेयर होता था उस ज़माने में, डेट वॉज फोटोस्केप। तो मुझे लगता है हमेशा से मुझे शौक था नेचर कैप्चर करने का, लोगों को कैप्चर करने का, रियलिटी कैप्चर करने का।
2: तो जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, जैसे आप बता रहे थे कि आपने FSC किया है, तो घर वालों ने सपोर्ट किया? उन्होंने कहा नहीं कि ये क्या करने वाले हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा करके क्या कर लोगे, इसमें क्या कमा लोगे?
3: बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो KPK के लोग हैं पंजाब में, तो शायद ये बड़ा कॉमन था, मैस मीडिया, फिल्म, फोटोग्राफी, हमारे वहाँ पे दो ही शोबे समझे जाते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। तीसरा फाइन आर्ट्स वाले बच्चों को समझा जाता था कि शायद बड़ा कमज़ोर कुन जैन बच्चा है, ये ज़्यादा पढ़ नहीं सकता। तो जब मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने वालिद को बताया, तो फर्स्ट तो वो थे कि नहीं किसी अच्छी फील्ड में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, कुछ और कर लो एंड ऑल दैट। लेकिन लकीली मेरे कुछ कज़न थे लाहौर में, कुछ दोस्त थे जो NC में पढ़ रहे थे, और जब बात की उनसे, उनने वालिद साहब को मनाया। बट नो डाउट पीयर प्रेशर, वालदैन का प्रेशर था कि कोई अच्छी फील्ड चूज़ करो, ये नई फील्ड है, इसमें पैसे नहीं है, कैरियर नहीं है, लोग इसे अच्छा देखते नहीं है, समझते नहीं है, तो वो प्रेशर तो हमेशा से था। बट मुझे लगता है मैं भी काफ़ी ज़िद्दी था और मैंने मना लिया किसी ना किसी तरह।
2: और वो यही होता है ना कि टाइम के साथ आपके पेरेंट्स समझ भी जाते हैं कि इसकी क्या कैपेसिटीज हैं और ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जब आपने फिल्म मेकिंग का स्टार्ट किया तो क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसे पर्सन, कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया टू बी अ फिल्म मेकर?
3: मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड सिनेमा था उस जमाने में, कुछ चैनल्स आते थे और मैं हमेशा, एक फिल्म थी मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, उनकी एक मूवी थी मकबूल,

0: और वो केबल पे एक दिन चली और हम बैठ के देखते थे, छुप के घर से देखते थे क्योंकि मूवीज भी नहीं देखने देते थे घर वाले। तो मकबूल मैंने पहली दफा देखी और मकबूल देख के मेरे माइंड में आया कि ये लिखता कौन है, बनाता कौन है, कैसे बनती हैं। और एक एनसीए के मेरे दोस्त थे, वो जब लाहौर से एबटाबाद आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये फिल्म बनती कैसे है, ये लिखता कोई और बंदा है, शूट कोई और करता है, इसका साउंड कोई और करता है, एडिट कोई और करता है। तो मैंने कहा ये सारा कैसे सीखूंगा मैं। तो उनने फिर मुझे बताया कि देयर इज अ डिपार्टमेंट एनसीए में, बीएनयू सक न्यू ओपन हुई थी, तो उनने मुझे कहा वहां पे आप जाएंगे आपको सब चीजें थोड़ी थोड़ी सिखा दी जाएंगी और इन सब को कंबाइन करके फिल्म बनती है। तो मैं स्टार्ट में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा क्योंकि मैं तो एक लाइन भी नहीं लिख सकता था। तो लेकिन कुछ फिल्म्स और कुछ डायरेक्टर्स ने मुझे इंस्पायर किया, जिसमें पहला नाम मैंने विशाल भद्वाज लिया, दूसरा दिल से एक मूवी आई थी मनी रत्नम की। तो मनी रत्नम की मूवी मैंने देखी, उस वक्त उसका एक गाना था सतरंगी, तो वो क्योंकि पहाड़ों में शूट हुआ है, मैं खुद पहाड़ों से था एंड ऑल डैट, तो मैं हमेशा पहाड़ों को देखता था। मैं कहता था यार ये गाना मैं भी कभी शूट ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फैक्टर्स थे उस वक्त जो मैं चीजें देखता था, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि यार करनी चाहिए फिल्म मेकिंग।
1: इसमें आपको ये नहीं लगता कि आपका जो रहन सहन होता है, जो आपका कल्चर होता है, जो आपकी, जैसे आप कह रहे थे पहाड़ों से है, वो आपकी इमेजिनेशन को बड़ा बूस्टअप करता है?
0: बिल्कुल बूस्टअप करता है, और यही रीजंस हैं कि अभी भी जो मूवीज मैं देखता हूँ जो कि मोस्टली पहाड़ों में बनी हुई हैं, वो मुझे इंस्पायर ज्यादा करती हैं एज कम्पेयर टू अदर मूवीज, क्योंकि वो बचपन जिया आपने, वो रियलिटी देखी, ऑब्जर्व किया। जिस तरह रिसेंट एक फिल्म थी लैला मजनू, वो लैला मजनू शायद इतनी अच्छी फिल्म नहीं होगी, बट मुझे इसलिए अच्छी लगी पहाड़ों में शूट हुई। देयर इज अनदर फिल्म हैदर विशाल भरद्वाज की, वो उससे ज्यादा कनेक्ट मैं इसलिए कर सकता हूँ कि शायद वो पहाड़ों में शूट हुई। तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है जिस कल्चर में आप पले बढ़े, और उस कल्चर में हमें एक और चीज बड़ी मिलती थी, वो था सुकून और टाइम। अफरा तफरी नहीं थी जैसे कि बाकी शहरों में होती है। तो हमारा एक ही काम होता था, या तो नेचर ऑब्जर्व करना या तो लोगों को ऑब्जर्व करना। और मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग में ये दोनों बेसिस हैं कि आपने अपना स्टोरी वर्ल्ड कैसे बनाना है और उसमें जो अपने कैरेक्टर्स डालने हैं वो कैसे डालने हैं। तो वो मेरे ख्याल से उसी इंसान के लिए पॉसिबल है जिसने ऑब्जर्व की होंगी ये दोनों चीजें।
1: और एज अ फिल्म मेकर, जब आपके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं और वो आपको अपने आइडियाज का बताते हैं और वो कहते हैं कि हम इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं, तो एज टीचर और एज अ फिल्म मेकर कितना चैलेंजिंग होता है उनको बताना कि बेटा आप राइट डायरेक्शन में हो, या किस तरह से इसको आप ओवरऑल अपनी इमेजिनेशन को पोर्ट्रे कर सकते हो?
0: मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चीज होती है वो होती है रियलिटी, एक तो होती है लिव्ड रियलिटी और एक होती है इमेजिनेटिव रियलिटी जो आपने किसी मूवी में देख ली। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी सरसों के खेत अगर रियलिटी में नहीं देखे, मैंने खाली उन्हें करण जौहर की फिल्म्स में देखा, तो वो रियलिटी सेकंड हैंड रियलिटी है मेरे पास और वो खाली इमेजिनेटिव चीज है। मैंने रियलिटी में देखी नहीं कि सरसों के खेत लगते कैसे हैं। तो बच्चों का मसला ये है कि वो जो उनने रियलिटी लिव की है, जो एक्सपीरियंसेस लिव किए हैं, वो उसे कभी भी स्क्रिप्ट में नहीं लाते। वो जो सेकेंडरी रियलिटी गैंग्स ऑफ वसीपुर देख लिया, मिर्जापुर देख लिया, वो चाहते हैं कि वो वाली रियलिटी लिख के लाएं जो कि बिलीवेबल नहीं बन रही होती है टाइम्स। तो मैं उन्हें पहला जो असाइनमेंट है वो वही देता हूँ कि जो चीज आप डेली ऑब्जर्व कर रहे हो उसे लिखो। वो किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी जगह पे चोरी हो सकती है, किसी जगह पे लड़ाई हो सकती है। तो मुझे लगता है जो लिव रियलिटी है वो लिख अच्छे तरह से सकते हो और आप उस शूट अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपने वो ऑब्जर्व किया होता है, पल जिया होता है।
1: इसी के साथ लिसनर्स, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6। मैं हूं मरियम इश्तार, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के सर।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद गुफ्तगू हैं वो हैं सर उमर सईद कुरैशी, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। अभी ब्रेक में जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए कितना चैलेंजिंग है और एज अ फिल्म मेकर आपके लिए कितना चैलेंजिंग है उन्हें समझाना, तो सर कोई ऐसी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो आपके करियर में आपको जिसने टफ टाइम दिया हो या जिसके बाद आपका सोच या आपके काम करने का जाविया बड़ा बदल गया?
2: मेरे ख्याल से एक फिल्म थी जो हमने की फसी बारी खान के साथ, जिनका एक बड़ा फेमस प्रोग्राम चलता है कदूसी साहब की बेवा। तो फसी भाई की स्क्रिप्ट जब पहली दफ़ा आई वो इतनी अच्छी सादा सलीस उर्दू थी कि वो समझते हुए हमें टाइम लगा। और मैं इससे पहले डेफिनेटली FSC तक उर्दू तो पढ़ता रहा, लेकिन काफ़ी गैप के बाद इतना अच्छा जब कोई प्रोजेक्ट आया वो मैंने पढ़ा। और वो जब पढ़ा मैंने, क्योंकि जो एक अच्छा राइटर होता है उसकी निशानी यही होती है कि जब आप उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आप इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को। तो जब फसी भाई की स्क्रिप्ट थी वो चैलेंजिंग इसलिए थी कि पहली दफ़ा इतने बड़े राइटर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल काम किया, दूसरा फसी भाई डायरेक्ट भी कर रहे थे, सेट पर भी थे। मुझे लगता है वो एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जब हमने किया, क्योंकि वो अंदरून लाहौर में करना था और अंदरून लाहौर की छोटी गलियों में लोग ना जमा हो जाएं, फिर जब आप कमरे में शूट कर रहे हो तो बाहर से रेडी वाले की आवाज आ रही है, कभी किस बच्चे की आवाज आ रही है, ऑल दैट। तो वो इतनी बड़ी प्रोडक्शन में जब मैंने पहली दफा शूट किया और शूट के बाद जब वो एडिट होकर सामने आया, तो एक तो आपको अपने पोटेंशियल पे भी यकीन होने लगता है, आप कहते हो यार ये तो मैं कर सकता था, और फिर आप कहते हो मैं कर क्यों नहीं रहा था। तो वो प्रोजेक्ट ने मुझे लगता है हमें बड़ा कॉन्फिडेंस दिया फॉर अ रीजन के वो उसके बाद साइप्रस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक गया, वहां पे स्क्रीन हुआ, उसके बाद वो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुआ। जब यहाँ दो जगह स्क्रीन हुआ तो मुझे लगा कि यार इतनी मेहनत करके हम कोई और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और वो डेफिनेटली इससे आगे भी जा सकता है।
1: अच्छा, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप एक वर्ड बार बार बात कर रहे हैं एडिटिंग का, यानी एडिटर और एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टर, इसमें डिफरेंस क्या होता है?
2: देखें, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एडिटर, जो कि एंड रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस पूरी फिल्म का करता है। हमें पहली क्लास में फिल्म मेकिंग की पढ़ाया जाता था कि जो एडिटर होता है वो फिल्म का खुदा होता है। वो एक अच्छी शूट की हुई चीज़ को बुरा भी बना सकता है और बुरी शूट की हुई चीज़ को कमाल भी बना सकता है। तो एडिटर तो बाद में आते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सिनेमाटोग्राफी है। जो एक सिनेमाटोग्राफर होता है उसका काम अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया जाए तो इट्स लुक एंड फील। आपको फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी कहूँ, आप एक क्लिप चल रहा है इंटरनेट पे, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये जब भी मेट का है, तो आप विद इन सेकंड्स कहेंगी हाँ। मैं आपसे पूछूं क्यों, आप कहेंगी पूरी फिल्म में जो लुक एंड फील है वो सेम ही है और मैं जहां पे इसका क्लिप देखूंगी मुझे पता लग जाएगा। ये निशानी है एक अच्छे सिनेमाटोग्राफर की कि उसने अपना एक स्टोरी वर्ल्ड बनाया और वो स्टोरी वर्ल्ड लोगों को याद करवा दिया खाली अपनी लुक एंड फील के थ्रू। अब सिनेमाटोग्राफर का काम हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है कि खाली कैमरा हैंडल करना, हालांकि सिनेमाटोग्राफर का काम यूजली कैमरा हैंडल करना नहीं होता। वो कॉम्प्लेक्स शॉट्स में तो कैमरा खुद हैंडल कर सकता है, लेकिन वो यूजली कैमरा ऑपरेटर से जो लुक एंड फील होती है डिजायर्ड किसी सीन की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक सुबह है जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से काम कर रहे हैं और दोनों खफा एक दूसरे से, यानी उदासी है कमरे में। अब राइटर ने तो लिख दिया, डायरेक्टर ने कहा मुझे उदासी भी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, अब ये आप कैसे दिखाओगे थ्रू कलर्स, थ्रू फ्रेमिंग, थ्रू लेंस, कि कितना गैप है दोनों में, बीच में क्या चीजें हैं, क्या वो किसी बीच पे खड़े हैं, नेगेटिव स्पेस कितना है, पॉजिटिव स्पेस कितना है, कॉम्पोजिशन कैसी है। तो सिनेमाटोग्राफर राइटर की चीजों को स्क्रीन पे लेके आता है थ्रू लुक एंड फील। सिनेमाटोग्राफर के बाद फिर एडिटर के पास जाती है चीज़, और एडिटर जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई होती हैं, कुताइयां रह गई होती हैं सिनेमाटोग्राफर से, उसे समझाता है कि यहाँ पे मैं ये चाहता था 19:20 हो गया, अब आप इसे ठीक कर दें थ्रू कलर टोनिंग या थ्रू कलर ग्रेडिंग। और इसका भी डिफरेंस अक्सर स्टूडेंट पहली क्लास में पूछते हैं कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग का क्या डिफरेंस होता है, तो वो हमेशा जो हमें सुन भी रहे हैं उनके लिए भी यही है कि कलर करेक्शन आपकी सिंपली ओवरऑल आपकी मूवी क्या तो कूल टोन की तरफ है या तो वार्म टोन की तरफ है। बट कलर ग्रेडिंग में जब हम आते हैं हम कहते हैं जी अगर कोई बंदा बैठा हुआ है हमारे सामने वाइट के आगे वाइट शर्ट पहन के, तो वाइट के आगे वाइट शर्ट कभी भी ठीक नहीं लगेगी, बंदा प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो कलर ग्रेडिंग में हम उस वाइट शर्ट का कलर चेंज करके ब्लू कर देते हैं। अगर किसी बंदे ने रेड लिपस्टिक या किसी खातून ने लगाई हुई है और हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा लग रही है, तो हम कलर ग्रेडिंग में जाके उस लिपस्टिक को टोन डाउन कर देते
1: हैं और वो हो जाता है इजीली
2: हो जाता है। और हमने बहुत बड़े बड़े शूट्स में किया,
1: ठीक है, और इसी तरह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस होगा?
2: प्रोड्यूसर यूजली इन फिल्म प्रोड्यूसर यूजली करता है इस तरह कि एक तो बजट वो जहां से भी लाए, चाहे वो स्पॉन्सर्स के थ्रू लाए, किसी चीज के थ्रू लाए, उसके बाद फिल्म की मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। डायरेक्टर खाली कर ये रहा होता है कि आपके राइटर के विजन को स्क्रीन पे लाने वाला प्रोसेस सारे डायरेक्टर के पास होता है, और जो प्रोड्यूसर है वो आपका बजट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रहा होता है सारी।
1: और सर अगर बात करें हम फिल्म मेकिंग की और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की, तो किसकी डायरेक्शन प्रोडक्शन बहुत चैलेंजिंग होती है और किस में बहुत ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किसको रियल कैमरा और वो जो रियल और रील का डिफरेंस है उसमें खत्म करना जो है वो बहुत चैलेंजिंग लगता है?
2: मुझे लगता है कि अगर मैं क्योंकि मैं खुद फिल्म ज्यादा पसंद करता हूँ, तो आप किसी डॉक्यूमेंट्री वाले से पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट्री को ही कहेगा। मुझे लगता है कि एक स्टोरी वर्ल्ड बनाना इज ज़्यादा डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू एक स्टोरी वर्ल्ड बना हुआ और उसमें जाके शूट करना, बट दोनों की डिफिकल्टीज अपनी अपनी है। अगर आप मुझसे पूछेंगी कि एक स्टोरी वर्ल्ड बिल्ड करना, बाय फिल्म की हम सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, जो डेफिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा सूट करती है, मुझे लगता है इट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। रियलिटी का आपने एक बबल क्रिएट करना है, और जो सिनेमा में बैठा हुआ है उसे पता है कि वो एक इल्यूजन देख रहा है, बट वो स्टिक हो गया उसके साथ क्योंकि उसे वो रियलिटी लग रही है। अब वो रियलिटी क्रिएट करना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। एज कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट्री, आप रियलिटी में जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं और उसे फिर क्रिएटिवली ट्रीट कर रहे हैं। रियलिटी तो आपके पास बनी पड़ी है, फिल्म में तो आपने एक रियलिटी बनानी है और यकीन दिलवाना है कि ये रियलिटी है, इल्यूजन एक क्रिएट करनी है। तो मुझे लगता है कि वो इल्यूजन ऑफ रियलिटी बनाना ज़्यादा मुश्किल है
1: एज कम्पेयर
2: टू डॉक्यूमेंट्री, लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट्री वाले से पूछेंगे तो शायद उल्टा जवाब आएगा।
1: ऐसा ही है। और सर जब स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, आपके पास भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें अक्सर डिमांड में आप ही मिल रहे होते हैं फिल्म मेकिंग में, बच्चे चाह रहे होते हैं कि वो आपके साथ प्रोजेक्ट्स करें, तो आप ज्यादा फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स करवा रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज के भी करवा?
2: मैं एक आधा डॉक्यूमेंट्री का लाजमी पकड़ता हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उनको करवाते करवाते मेरी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैंने की भी हैं, 3 से 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा पसंद मुझे फिल्म ही है, बट डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट्स मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए भी करवा रहा होता हूँ।
1: और फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री में कितना चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट?
2: मेरे ख्याल से चैलेंजिंग इसलिए होता है कि आप बच्चों को जितना मर्जी अच्छा समझा दो, एंड रिजल्ट जब वो ले के आते हैं वो अपनी समझ के मुताबिक लेके आ रहे होते हैं, और फिर उसे ही निखारना होता है आपने, और एंड पे सम हाउ पूछा यही जाता है कि कौन था सुपरवाइजर, चाहे वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो तब भी सुपरवाइजर, बहुत बुरा हो तो तब भी सुपरवाइजर। तो मुझे लगता है वो फिर आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ती है क्योंकि आपका नाम साथ जा रहा होता
1: है। ऐसे ही है, और इसी के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अब एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ, और आज हमारे साथ सर उमर सईद कुरैशी हैं, और हम बड़ी मजे की गुफ्तगू कर रहे थे अभी स्टूडेंट्स और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सर मुझे ये बताएं, हम एज इन प्रोग्राम जो हमारा है फिल्म मेकिंग का, उसमें स्टूडेंट्स ऑफ फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या उनके लिए हम सपोर्ट फैक्टर्स और क्या उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं?
2: मेरे ख्याल से देखा जाए तो रिसेंटली अभी एक हफ्ता पहले हमने चार सेमिनार करवाए, और उन चारों सेमिनार में जो लोग आए वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स थे और जिनने टॉप के कमर्शियल्स और फिल्म्स प्रोड्यूस की हुई थी मार्केट में। उनके साथ उनके सेशंस थे डेढ़ डेढ़ घंटे के, जो कि दो दिन चार सेशंस चलते रहे। उसके बाद मुझे लगता है ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो फिल्म मेकिंग में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। ये ना तो आपको सिखाता है, एट द सेम टाइम ये आपको मोटिवेट भी करता है। इन सेमिनार्स के अलावा जो हमारे पास स्टूडियो अवेलेबल है, मुझे लगता है स्टूडियो के अलावा भी रिसेंटली हमारे पास जो कैमराज आए हैं, जो बिगिनर लेवल फिल्म मेकिंग कैमराज हैं, A7 III और बाकी कैमराज इक्विपमेंट हमारे पास, साउंड का इक्विपमेंट आया है, मुझे लगता है बिगिनर लेवल फिल्म मेकर के लिए ये लैब इक्विपमेंट सफिशेंट है फिल्म में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आपको बड़ा इक्विपमेंट, बड़ी लाइटें चाहिए, बट मुझे लगता है इनसे इस हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप इंडस्ट्री लैंड इजीली कर सकते हैं।
1: सर जैसे अभी आपने कमर्शियल्स की बात की, तो मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी, उसमें मेंशन था कि आपने टेक्नो, रियलमी और इन्फिनिक्स के टीवी कमर्शियल्स को प्रोड्यूस भी किया हुआ है। वो एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट था फ्रॉम योर फिल्म मेकिंग, और वो जर्नी और ये जर्नी कैसा रहा है पूरा सफर?
2: मुझे लगता है कि जो कमर्शियल कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके हाथ पैर तो बांध देते हैं, बट आपको फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट करते हैं। बट जहां आप फिल्म मेकिंग में आते हैं वहां आपको मसला ये होता है, मसला तो नहीं मैं कहूँगा, क्रिएटिव फ्रीडम लाजमी होती है, बट मुझे लगता है अभी तक पाकिस्तान में वहाँ थोड़ा पैसा कम है। तो दोनों के मेरे ख्याल से अपने कॉन्स और बेनिफिट्स हैं, और अगर देखा जाए तो कमाना ज़्यादा पाकिस्तान में कॉर्पोरेट और कमर्शियल काम से ही है, और अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के लिए लोग यूजली फिल्म मेकिंग और बाकी चीजें करते रहते हैं।
1: और सर जो आपको सुन रहे हैं उन स्टूडेंट्स को आप क्या फिल्म मेकिंग से रिलेवेंट, क्या ऐसी एडवाइस और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बताना चाहेंगे कि जब वो अपने करियर का आगाज करें तो इन टिप्स और ट्रिक्स को लाजमी फॉलो करें?
2: मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज तो ये है कि फिल्म देखें ऑब्जर्वेशन से। आपको अगर आप नहीं जाके बाहर ऑब्जर्व कर सकते, चीजें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, ट्रैवल नहीं कर रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, तो जो सबसे पहली चीज़ है फिल्म्स देखें, और डिफरेंट जॉनर्स और डिफरेंट कंट्रीज़ की फिल्म देखें। मसला यह है कि यहाँ पे सारा कमर्शियल काम देखा जाता है, हालांकि ये खाली कमर्शियल सिनेमा है, और कमर्शियल सिनेमा को अगर मैं सम अप करूँ तो इट्स लाइक अ मिक्स अचार जिसमें सब के लिए सब कुछ है। लेकिन जब आप आर्ट सिनेमा की तरफ जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली प्योर ऑब्जर्वेशन है, सोसाइटी के मसले हैं, कल्चर के मसले हैं, वो सिनेमा देखने से आप कुछ ना कुछ लाजमी सीख रहे होते हैं। और अगर तो आप रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन आपकी वीक है, आप ट्रैवल नहीं करते, तो मुझे लगता है आप आर्ट सिनेमा देखें, क्योंकि मुझे लगता है देखने से जितना आप सीखते हैं, क्योंकि मैंने जब जाता हूँ शूट करने कोई भी चीज़ तो कहीं ना कहीं से मेरे माइंड में इंस्पिरेशन होती है कि मैंने फलां फिल्म देखी थी, वहाँ पे ये कॉम्पोजिशन थी, वहाँ पे शॉट इस तरह लिया हुआ था। तो आपकी विजुअल वोकैबुलरी बढ़ती जाती है जब आप अच्छी फिल्म्स देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स को मशवरा है कि डेली की एक फिल्म देख के सोएं।
1: और सर जब स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट करना होता है तो उनकी डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एज अ DOP, वो सब चीज़ें खुद कर रहे होते हैं?
2: नहीं, मोस्टली वो हेल्प ले रहे होते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में आपकी प्रोडक्शन के लिए आपको वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो हम एम्फसाइज करते हैं, कि एटलीस्ट एडिटिंग और डायरेक्शन आप खुद करें, DOP, लाइट, गैफर ये आप बाहर से लोग हायर कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में इन द एंड काम डायरेक्टर ने ही करवाना है। गैफर को तो आप कहेंगे इस प्लेस पे लाइट रखे, इस डायरेक्शन में लाइट रखे, वो रख देगा। कहाँ से कट करनी है, कितनी कट करनी है, कितनी डिफ्यूज करनी है, वो डायरेक्टर का ही काम है, तो वो काम करवाता है यूजली।
1: ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल अभी का टाइम की बात की जाए तो AI ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोजेक्ट को इस तरह से मैनेज करना, प्रोजेक्ट को लेके चलना उतना ही आसान है, या स्टूडेंट्स जो है उसकी वजह से चीज़ों का फायदा उठाते हुए कुछ चीज़ों को कर भी रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग भी है?
2: देखिए, अगेन AI इज अ गुड थिंग और होनी भी चाहिए स्टोरी बोर्ड तक और बाकी चीजें आपकी हेल्प लाजमी असिस्ट लाजमी करती है, बट एआई ने वो दुनिया नहीं देखी, वो एक्सपीरियंसेस नहीं देखे, ना वो फील किए हैं जो कि एक नॉर्मल बंदा रियल लाइफ में कर सकता है। जैसा कि सिंपल एग्जांपल दूंगा, इम्तियाज अली की जितनी फिल्म्स होती हैं उसमें आप देखेंगी कि जब भी करेक्टर को हर्ट होता है लव लाइफ में या कुछ उसको धचका लगता है जिंदगी में, तो वो अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है। अब ये चीज आपको एआई नहीं बता सकता, ये आपकी प्योर ऑब्जर्वेशन है कि जब बंदे का दिल दुखी होता है तो क्या क्या क्या क्या पॉसिबिलिटीज में कर सकता है। इम्तियाज अली की फिल्म में आपको मिलेगा कि वो अकेला बैठ के किसी फूड पॉइंट पे खाना खा रहा है। अब एआई आपको नहीं बता सकता, वो बताएगा शायद अमेरिका के कल्चर के हिसाब से कि हाँ जब कोई बंदा सैड होता है तो वो जाके समंदर के किनारे बैठता है, तो लाहौर में तो आपको समंदर नहीं मिलेगा, यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। तो मुझे लगता है कि असिस्ट लाजमी कर सकता है, आप उसे बता सकते हो जी रावी किनारे बैठा हुआ है मेरा बंदा एंड ऑल दैट, अब मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके एक्शन की, तो वो लाजमी कर सकता है, असिस्ट लाजमी कर सकता है, बट जो विजन है प्योरली वो आपका ही है।
1: और क्या स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को एआई?
2: मेरे ख्याल से करता है, असिस्ट करता है, मैं अभी हेल्प इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने खुद बड़ी स्क्रिप्ट जनरेट करवाने की कोशिश की है। हेल्प तब करता है जब आप क्लियर हो कि आपने क्या करना है, मैंने एक सीन दिखाना है तो मैं उसे बताऊंगा सीन में ये चीज चाहिए, ये मेन पॉइंट्स है, हाँ वो तब लिख देगा। अगर मैं उसे कहूंगा सीन लिख दे पूरा, तो वो आधी उसने कोई चीजें अमेरिका की देखी होंगी, आधी साउथ अफ्रीका की, कहीं कहां की, तो मिक्स करके आपको चीज तो लिख देगा नो डाउट, बट उसमें प्योरिटी और क्लैरिटी मुझे अभी तक नहीं मिली।
1: और एज अ फिल्म मेकर एंड अ टीचर कितना चैलेंजिंग है उस काम को जज करना जो शायद स्टूडेंट्स ने असिस्ट करवाया हुआ है एआई से।
2: मेरे ख्याल से असिस्ट करवाना मुझे बहुत बेहतर लगता है, बट मैं उससे पहले उनका विजन लाजमी पूछता हूँ। मैं कहता हूँ अपने विजन, अपने शॉट्स, अपनी चीजों में क्लियर हो जाओ, उसके बाद एआई से हेल्प ले लो। फॉर एग्जांपल रीसेंट एक शॉट था और एक बच्चा वाज वेरी क्लियर कि मैंने क्या करना है, बट उसने अपने डीओपी को समझाना था, तो मैंने कहा यही चीज आप लिखो एआई में और एक इमेज जनरेट करवाओ और यही अपने डीओपी को दिखा दो कि मुझे एग्जैक्टली ये चीज चाहिए। तो यहां तक मामला मुझे क्लियर लगता है कि जब आप क्लियर हो और आपने काम करवाना है तो आप असिस्टेंस लाजमी लो, बट प्योरली जब आप एआई के ऊपर चले जाओगे तो मेरे ख्याल से विजन आपका नहीं रहेगा।
1: और लास्ट में जो आप एडवाइस देना चाहें फिल्म मेकिंग में स्टूडेंट्स को जो स्पेसिफिकली इसको एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है?
2: मेरे ख्याल से सबसे पहले तो फिल्म्स देखें, दूसरी चीज डेली अगर आप इतने पैशनेट हैं जाएं पिक्चर्स लें, फ्रेमिंग बेटर करें, क्लिप शूट करें, बैठ के एडिट करें। अगर ये पैशन नहीं है और आपको ये सर दर्द लग रहा है तो मुझे लगता है फिर शायद आपको और फील्ड चूज कर लेनी चाहिए।
1: इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। बहुत शुक्रिया सर उमर सईद कुरैशी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आके हमें इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई फिल्म मेकिंग से रिलेवेंट, और सीखने को इतना कुछ मिला। मुझे यकीन है कि हमारे सामईन ने भी बहुत कुछ सुना होगा। नेक्स्ट वीक इसी तरह से मेरा और आपका सिलसिला जुड़ा रहेगा और मिलेंगे फकेलिटी आर्ट के साथ।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
3: In sadaye Lahore ast, in sadaye UCP ast. Lotfan goosh bedahid FM 92.6 jahane UCP.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा।
1: बाकी?
0: हाँ।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वज़ारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मज़ीद तफ़सीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। PTA

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6 UCP की दुनिया।
5: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

ए सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।